श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिनाम मदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ

हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको प्रणाम है। सात घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में श्वेत कमल धारण किए हुए प्रचंड तेजस्वी कश्यप कुमार सूर्य को मैं प्रणाम करता हूं। लोहित वर्ण रथारूढ़ सर्वलोक पितामह महापापहारी सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूं। जो त्रिगुणमय ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप है, उन महापापहारी महान वीर सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूं। जो बढ़े हुए तेज के पुंज है और वायु तथा आकाश स्वरूप है, उन समस्त लोगों के अधिपति सूर्य को मैं प्रणाम करता हूं। जो दुपहरिया के पुष्प समान रक्तवर और हार तथा कुंडलों से विभूषित है, उन एक चक्रधारी सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूं। महान तेज के प्रकाशक जगत के कर्ता महापापहारी उन सूर्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। उन सूर्य देव को जो जगत के नायक है, ज्ञान विज्ञान तथा मोक्ष को भी देते हैं, साथ ही जो बड़े बड़े पापों को भी हर

बिरले जाने। ये पंक्ति जिस विच सारे शब्द का केंद्री भाव है, भगत जी दसदे हन कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करके नाम सिमरदा है,